शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: 102.3 FM.
1: फोकर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम वैपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम वैपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम वैपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 102.3
4: FM.
3: வந்துட்டே இருக்கு சார், நன்றி.

0: coming from the tri-services, the Army, the Air Force and the Navy, as well as from the police forces of India in the khaki. Olive, blue, white khaki. The uniform they donned, the vow they took, commitment to the nation to safeguard the frontiers, always and ever. And a grand fanfare now, welcoming our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu.
1: Or a Manani Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu. Agarwal ki suchna, unke sakshagar, unke aage chalte hue, Manani Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, is waqt aa chuki hai, Rashtrapati Bhavan ke gartan. सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का खड़े होकर स्वागत किया और साथ ही माननीय राष्ट्रपति के स्वागत में भी सभी लोग खड़े हो गए। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अब